एंजेलो की इंग्रेज विलाद के मशहूर पॉप बैंड ब्रदर्स ऑफ मैन जून नवार्स ते कहती हाथे गनेरुनो वर मकबूल लवे मी ए बैंड के इमेजस एल्बम कहे मिने लवे

जिन्हें भी उनका जहन में उनके सवाल होंगे, जिन्होंने वो बेहिजाब देखे नसीब उनके कमाल होंगे। झुकी नजर का सुरूर ऐसा किसी की सुध-बुध रही न बाकी, मिलाते होंगे वो जिनसे नजरें, खुदाया उनके क्या

पोस देहा लोब वे की देहा सातार वना हरनु कोई मशहूर दिवे ही फिल्म बोस के एमे मकबूल वे ए लोबी के लवा मिलवे की फिल्म के थीम लवा इसमें

0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गार्ड दिवे ही एफएम दिवे ही नाइक दिवे ही नाइक
1: मोदी है एकेम मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम।

0: हर्ट्स दिव्य ही एफएम इशा नमादवागुत
1: नोदिह एके मेगाहर्ट्स दिव्य ही एफएम
2: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: ऐसा से पर लवता की नुनि में वाहक तके ए वाहकता मिहारु आ अडका आ रूहकाय ए फोरिया ए जोश किंगुस्तिनी मुलिं एहिं दुनिया का
1: दिवाली ऐसा क्या वाइट तू जाऊन उठना बिटना लाऊन ये की तू तेरे भाई के राड़े नहीं देखा तू इधर कच्चे तू
2: हाँ वो अधे रिमिक्स की बदले नो एक हमको लवे के निस्ते आ देरु में
0: कोमे हो मत वही के मिंदरु दे जहार
2: रिपीट अंगार दो हो गेरे दिहे जहार अधे बुदा दो हो गेरे बार जहार
3: नॉक नॉक तेरा बाप पाया
4: Version 2.0.
5: Me Hussein Wahid in

0: ईशा सुवाने कुरंता
1: कोब्बला
0: दिवे ही बहुगा सुकुं कुरे वेया कुरता की कोबा
1: अलिफु सीनु नूनु ता शवियन
0: रंगाडो फेमवेरुं एमे मैक को बुनाने की हिने
1: नाने फुलफिल लेवो
0: वारा रंगाडो वेहे ता फेन्निगु में बुनमा की कोबा
1: लिबे फुर्सत के बेनुं हिफु माडु कोब्बला की कुरं कुरा सुवाले तमे
0: मि तैयार वनी दिवे हे एफएम गेनस्ते शवियनी प्रोग्राम
1: शवियनी प्रोग्रामे दिवे हे बहुगा सुवालो अन्ना कोंगे रे को अन्ननी
0: कोम्मे हुकुरु आदि होनी हेरु दोहेगेरे अग्गडी तिरी हुगा
2: शविया

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

कहने को तो है ये दो लफ्जों की कहानी, बसर कर जाती है इसमें तमाम जिंदगानी।

गम और खुशी का हिसाब रखे तो जिंदगी बहुत छोटी है। बहते लहरों की गिनती कभी आसान होती है।